भला करके मनना है। सतगुरु दी बाणी दे अंदर गुर कहे आ साकार कमावो दी सानू शिक्षा दृढ़ कराई गई है। क्योंकि गुरु दे बचना नू ही असल विच सतगुरु दी बाणी दे अंदरों सानू समझ आउंदी है कि गुरु दी संग्या प्राप्त है। इस गुरु दे घर विच शरीर नू जा तस्वीर नू गुरु तस्लीम नहीं कीता गया। सतगुरु गुरु नानक दे पिता महाराज ने सिद्धां नू ए जवाब दिता सी कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला। इथे बाणी गुरु गुरु है बाणी दा सानू बार बार सतगुर बचन बचन है सतगुर दा सानू सतगुरु जी मार्ग दृढ़ कराउंदे ने। जदों असी बाणी गुरु गुरु है बाणी नू असी सरवण करदे हां और जदों असी गुरु कोल आउंदे हां तां धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता महाराज नू अपने गुरु दे स्वरूप विच जदों असी तस्लीम करदे हां